0: चैत्र आषाढ़ से ओठने दी जग सवाया जो नानक बिरले के गुरमुख प्यारे
1: भाई रे इस मन को समझाए भाई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याए आई रे

कुकुर के लोग बसेंगे तेई रेणी रे सोई दिल मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरहाई जानो रहत बिना

जे राक्षसां तो देवता नहीं बनाया तो फिर मेहर किस काम। पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, जेड़े पत्थर हिरदे सन पाहन सन, वली कंधारी वर्गे हंकारिया नू भी तार दिता, नीवा कर दिता। मन नीवा हो जावे तो रब दे नजदीक हो जाएगा। धन गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे भी वेख्या के किसे कोलों सृष्टि नू दुख पहुंच रहा है, ता आपने पापी नू बुलाया नहीं, घर जाके तारिया, घर जाके मेरा कीतिया। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ा दा इलाका सी। ए लोक जीवां नू खांदे सन, कोई भी मनुख इना दे हाथ लग जावे उसका मास खाना। किस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी, लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकया। इना दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत जलंदे नू धारदे होए उस जंगल विच चलदे चलदे देव गंधार पहुंचे। मर्दाने बेनती कीती, महाराज बड़ा चंगा है, कुछ दिन ठहरांगे शहर विच, पहुंच के मेरी भूख भी मिटेगी, कोई पदार्थ भी मिलनगे शकन नहीं। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, मर्दानिया ये लोग बड़े खतरनाक हैं, कौडा ता राक्षस एक सी ना, कौडा राक्षस इत्थे लखां राक्षस हन, मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हन। कौडा ता मनुखां नू तेल विच तल के खांदा सी, पर ए मनुख दा मास कच्चा ही खा जांदे हन, एदे भयानक हन। ते महाराज फिर एहो जिहियां खतरनाक थावां ते तुसी आपे क्यों पहुंच जांदे? मर्दाना कंबिया, महाराज एदे भयानक शहर विच क्यों जा रहे हो? चलो वापस चलिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कह लगे, ईश्वर कृपा करेगा, एही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जानगे। मर्दानिया तेरी भूख ने अनेकां दा भला कीता है, अनेकां नू तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे, तेनू 36 प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नू देव लूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलदे हन। ते मर्दाना दा रंग पीला पैन लगा, एदियां भयानक शकलां, महाराज अज नहीं बचांगे, ये तो बड़े भयानक मनुख जापदे, बड़े भयानक राक्षस हन। गुरु साहब कहन लगे, तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नू बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। कितनियां हनेरियां आउन तूफान आउन, जिन्हां बूटियां नू जिन्हां ब्रिशां नू सुमेर पर्वत दा आसरा है ना, चखड़ जाओ ना डोलनी, कितने चखड़ आ जान ओ फिर बूटे डोलदे नहीं, उन्हां नू कोई हिला नहीं सकदा। इसे तरह मर्दानिया जिन्हां नू करतार दा आसरा है,
अकाल पुरख का आसरा है, उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। आहा किथे किथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जाके

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, अज इना देवां नूं भी देहां नूं भी देवत्यां दी नगरी बना दिता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरां होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेठे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

हमारी जेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथा हम क्यों कर जपे हर तुम बड अगम अथा।

वटी हूँ बटा अदार तेरा मर्दबा वटी हूँ बटा अदार तेरा मर्दबा निर्मल निर्मल सूचा निर्मल निर्मल सूचा सुचो सूचा सुचो सूचा सुचो सूचा सुचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा ऊंचो ऊंचा ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भक्त सोहे दरबारे तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा भरत सुहावे ताल सुहावा विच अमृत जल छाया तेरा थान सुहावा हर जपे हर मंदिर साजिया हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम हर मंदर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते हम अपराधी तुम बख्शाते किस पापी को मिले ना कोई किस पापी को मिले ना कोई शरण आवे दान निर्मल।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, पिन पिन सब हो पर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर।

जानको जोगी जनी सिद्ध साधित अनेक तप जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी दवाजी सरस्वती हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहा। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों श्री ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ किया जाता है, इसका प्रधान सुर है, और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

0: जागृति दे दे
1: जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति दे दे ताल जागृति कौन जन्ना जागृति दे दे ताल जागृति

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, बिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजदा, और बीन जड़ा है वचित्र वीणा में वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले धर्म अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम जय मशक्कत नानक।

Amri jeba ek upravu. Jeba ek anek gun tare nanak charni paahe. Jeba ek kaman gun kahiye tere gun bahute. मैं एक न जाने कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोरी रा मेरी मत थोरी रा हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ बजा वड्डी हो बड़ा।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन उपदेश जयदेव नाम विप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावै। भगत जयदेव जड़े उस परमात्मा दी प्रेमा भगती करते हैं जिन्हां ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे है। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां भगत जयदेव नूं भी असी मत्था टेकदे हां। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा होए ए ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करते हैं। आज आप भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावै।

मैं ले लूंगा, क्योंकि कर्जा तू भी नहीं ला सकता। भगत भोले होंदे हैं। भगत जी कहन लगे, चाचा मैनू तो वैसे किसी चीज दे नाल प्यार नहीं। कागजा उत्ते भगत जी ने अपने दस्तक कर दिते, इधर ना लिखिया। तो गुरु साहब जी बाणी विच उपदेश करते हैं, पूरा न्याय करे करतार। उस करतार का न्याय पूरा है। इधर भगत दे नाल धोखा किया, उधर निरंजन दास दे घर नूं अग लग गई। इहदी लड़की दौड़ी आई, कहन लगी पिता जी घर नूं अग लग गई। निरंजन दास घर नूं दौड़िया, घर नूं अग लगी देखी, इन्ना घबरा गया। वह जिहड़ी नकली वसीयत सी वो भी पलदे हुए घर विच डिग के सड़ गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, ना ये कर रहा ते ना वो रहा। पर भगत जयदेव पिछे पिछे वो भी आए। भगतां दे मन विच किसे वास्ते वैर नहीं हुंदा, वो भी पिछे पिछे आ गए सन। चाचे दा घर सड़दा देखिया, भोला भगत दौड़ के घर के अंदर दाखिल होए कि घर का कोई समान ते कढ के लियावां, पर जद अग विच पैर पाया ते सारी अग बुझ गई। आखो सतनाम श्री वाह। गुरु का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै पाए ना साके जाले। उस नाम नो पानी डबो नहीं सकता, अग साड़ नहीं सकती। जिन्हां दे हिरदे विच नाम वसदा है वह भी कदी सड़ नहीं सकते। आखो सतनाम श्री वाहे। प्रतख नजारा देखिया, पिंड दे लोग वह ते नमस्कार करते ही ने। इहदा चाचा निरंजन दास भी हाथ जोड़ के भगत जी दे पैरां ते मत्था टेकदा है ते कहंदा, भगत मैनू माफ कर, हुण बेटा नहीं किया हुण भगत किया। कहन लगा, मैनू माफ कर, मैं कोई कर्जा तेरे पिता कोलों नहीं लैणा, ना तेरे पिता ने कोई कर्जा लिया। झूठे कागज बनाए सन, उस परमात्मा ने मैनू सजा दीती, मेरा घर सड़ गया। ते भगत जी कहन लगे, चाचा मैनू ते किसे चीज नाल मोह कोई नहीं, ये कारोबार तू साम ते मैं हुण चलिया उस परमात्मा दे प्यार विच, जिधर भी वो मैनू लै गया। कह के कारोबार

प्यास लगी पर लागे चागे कोई पिंड नहीं कोई पानी नहीं, गर्मी नाल बेसुरत होके धरती ते डिग पे। ते साहब जी बाणी विच बयान करदे ने, भगत जना की हर जीव राखै तुर तू रखदा आया राम। वो भगतां दे नाल वसदा है, भगत डिगा ते कृष्ण जी महाराज एक ग्वाले दा रूप धार के ते कोल आए, हाथ विच दुध दा कड़वा है, भगत दे मुंह विच दुध पाया, होश आई ते भगत जी हैरान होके पुछदे ने, काका तू कौन है कित्थों आए, ये ते जंगल है ना, इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात ना कोई घर। कृष्ण जी महाराज ने देखिया कि भगत होश विच आ चुका है, मेरा कार्य हो गया। कहन लगे ओ देख तेरे पिछले पासे साडा पिंड है, उत्थे मेरियां गावां चरदियां ने। ते भगत जी कहंदे ने हुणे ही मैं इधर आया सा, उदू ते कुछ भी नहीं सी, अच्छा देखदा मुंह दूसरे पासे कीता, किथे तेरा घर किथे तेरियां गावां, हुण उधर कुछ भी नहीं सी। भगत जी कहन लगे काका उधर ते कुछ भी नहीं, पर आवाज कोई ना आई। मुड़ के देखिया ते ओ लड़का जेड़ा दुध ला गड़वा लैके खड़ा सी ओ उतों अलोप हो चुका है। हुण मन वैराग नाल भर आया ते भरोसा होर बज गया कि मना जिदी याद विच मैं तुरे हां ओ मेरे तो दूर कोई नहीं। आखो सतनाम सिंह वाहिगुरु।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसी भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें वह अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें वह घा दा दुद्ध होवे, भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसी दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया है, एक रूप साडा ओ है। जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

मैं तेनु एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परां हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहब के अंगा नू ला दिने आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी के पवित्र चेहरे नू साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू

0: रत्नवा बारू पीत बनाई रचपत रत्न ही दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु सब लच बिगड़िया ना हनी।

ऐ मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाएं। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकया होया सी।

ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तों लटक रिया सै, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी उस वेले तू अरदास करदा सै, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, मैं तेरा सिमरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भूल गया ओ वेला, तू कहा सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे, ओए सुन मन गाफल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे।

तृप्तानु गले लग के मिले, तेनु गालना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया। ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया, नानक नु देखे तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाई अजय राव अपनी सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने, पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज दे दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने, जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओह रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे, जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है, भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है, बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने। ता बेबे नानक जी कहन लगे, हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए, एक पासे मेहता कालू जी राह पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे राय पोए दी तलवंडी दा राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदियां धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल दी गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़के है तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ए नहीं हो सकता। साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनन विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ। शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का आज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहने लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहते हैं सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाए। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती है। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

हूं काज उठ चलत सुमार है। छाड़ अंकार छाड़ होए पुरमार्ग में, छाड़ अंकार छाड़।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरसिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।

अखो सतनाम श्री श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्हां दी रसना चों निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सेवा ते सिमरन दो चीजां ने। दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउना ते उनू सुनना इदे बारे भी मेरे पातशाह दा फैसला है। गावीए सुनिए मन रखिए भाओ तेरे अंदर भाओ होवे तेरे गाउन ते सुनन विच प्रेम भाओ होवे फिर दुख पर हर सुख कर लै जाए भाओ होवे। जिस सेवा नूं लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए। इहदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे। चार तरह दे जीव धरती ते वसदे ने। वीरवार दे सत्संग विच रूटीन विच आए हो गुरु नानक पातशाह दी दुकान दे उत्तों जिथे जिथे जगह मिले बैठ के सौदा खरीदना जरूर मन दी पत्री फरोलनी के इना चारां विच्चों असी किथे पहुंचे हां। चार तरह दे जीव ने धरती ते एक है मिल क्लास एक थर्ड क्लास एक मध्यम क्लास एक उत्तम क्लास। एक मिल एक थर्ड एक मध्यम एक उत्तम। मिल कौन ने जिन्हां नूं बिल्कुल रब वाले पासे दी ना लगन है ना ज्ञान है बिल्कुल मिल है ही नहीं किसे खाते च। ओ जीव खाली आउंदे ने खाली चले जांदे ने। थोड़ा जा नक्शा वेखना होवे ते मिल क्लास वालियां दा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे भोरियां च बैठ के बंदगी करन वाले चित आया ते दुनिया नूं तारन लई भी निकले ने। एक पंधेरी नगर है सतगुरु महाराज दे सिखां ने जदों उत्थों दे प्रबंधकां नूं सुनिया दिता वी नौवें पातशाह आए ने गुरु नानक दी जोत उन्हां ने हल्के लफज बोले
کہ ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی گویاں دی کوٹھڑی وچ انہاں دا اتارا کرونے آ. کدی کسے دے لئی کچھ دل وچ نہ وی جگہ ہووے تے جوان تے کنٹرول رکھنا شاید بچ جاؤ. اندرلی گل جے جوان رائیں بن کے باہر آ گئی تے پتہ نہیں جے اے تختے وی بٹھا دے تے تختے تے وی لٹکا دے. دو منٹ پڑھ لو. نانک

बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। नानक ते जन सहज समात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मान योग साध संगत जीओ, सुखमनी अंदर साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने मनुख नू ऐसा आचरण जिन्हों असी अज दी भाषा विच सदाचार करैक्टर कहने आ बनाउण दी प्रेरणा दिती है। ते सतगुरु कहिंदे ने भी मनुख जिहड़ा ना है ते बड़ी वधिया चीज, सब तो श्रेष्ठ है, पर इहदी श्रेष्ठता इस गल तो सिद्ध होएगी कि जिस कार्ज वास्ते इस नू बनाया गया वो काम इहदे कोलों होया या नहीं होया। यह सिर्फ एक डेकोरेशन पीस ते नहीं, अपने मनोरथ नू सिद्ध भी करदा है। गुरदेव कहिंदे ने जानकै अंतर वसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। ते बंदा कहिंदा है कि परमात्मा ते सारिआं अंदर वसदा ही है, वो ते गैर हाजर नहीं है। पर इत्थे भाव सतगुरु सच्चे पातशाह दा कुछ होर है। गुरदेव कहिंदे ने वसदा ते सारिआं अंदर है, पर जिस मनुख दे सुभा विच सहज विच ए गल बन जाए कि वह हर वेले ए समझे कि परमात्मा मेरे अंदर वसदा, जे इस एहसास नाल ओ जीण लग पवे जिन्हू असी नाम कहने भगती कहने, ते फिर समझो कि वह अपने जीवन मनोरथ विच सफल होएगा। ताइयों ते सतगुरु जी ने बाणी विच इक थां ते ए गल कही है, कहिंदे ने पशु मिणै चंगियाईआं, खड़ खावै अमृत देहें। कहिंदे ने पशुआं कोलों चंगियाईआं मिलदियां ने, जे गऊ दा कर्म दुध देना है जीवन दा मनोरथ तां उह दुध देंदी है, किसे तरां दा वी भोजन उस नूं दे दिओ उह दुध देगी। इसे तरह बाकी दे वी जीवणां दे मनोरथ हैगे ने ते उह अपने मनोरथां तक पहुंचे होए ने, पर मनुख दे जीवन दा मनोरथ नाम है। इस करके सतगुरु कहिंदे ने नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करें। कहिंदे ने जिहड़े वी कर्म करदे ने जिस तरह दा वी उह जीवन बतीत करदे आ लांती है, त्रिकार है, क्योंकि नाम नहीं। इसे करके श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सहस्कृति विच एक बचन कीता, कहिंदे ने गुर मंत्र हीणस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कूकर है सूकर है गर्द बह काक है सरपन है तुल खल है। कहिंदे ने मनुख नाम नहीं जपदा गुरु की सिख्या के मुताबिक तो कुत्ता है, सूर है, सप है, कहिंदे ने जानवर है, मनुख नहीं। ते मनुख दा असल असला प्रगट हुंदा है उहदी करतूत तो। बाहरों ते चंगे भले कपड़े पा के मनुख बहुत सुंदर बन के संसार विच विचरदा है, लेकिन कई बारी जदों गल माड़ी करदा कहिंदे आ बंदा कदा गधा है, कई बारी आने नरा बैल है, कई बारी जदों बहादुरी दा कर्म करदा ते कहिंदे बंदा शेर है, इसे तरह जदों किते डंग मारदा विसा के कहिंदे ते सप है। मनुख दी अंदर दी करतूत प्रगट करदी है कि मनुख अंदरों की है। और खिमा करना यह माण असी ना करिए कि असी शायद पहलों भी मनुखी सा, पता नहीं कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, पता नहीं कितों कितों होके आए हैं। यह ते वाहेगुरु अकाल पुरख ने मनुखा जीवन की बख्शिश की है, चांस दिता है सानू। असी पढ़ते हाँ गुरु नानक साहब के इतिहास।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पह जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हां। नंद लाल सुन ली तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे हुं।

एक दे एक बन खाक बाद आतस ओ आब कोर लाओ है अल्ले अपेख सोई पुरान ओ कुरान ओई एक

ए बेनती जिसले नंद लाल ने कीती, क्योंकि उसने मुल पा दिता नजर दा। कलगीधर सचे पासा आखन लगे, नंद लाल ए शह मुल नहीं मिलदी, ए मुल दी वस्तु नहीं, ए जिस किसे नूं भी प्राप्त होई तां सदके उस मालक दी रहमत दे, उसकी बख्शिश नाल जिसनू भी मिली, ते तू इस मेर दी निगाह दा मुल पा छड़े। ए शह मुल नाल नहीं मिलदी, कया जान बदल विच देसा एक नजर मेर दी करियो। ता अगों जवाब दिता, सौदा ए मंजूर नहीं उस आख सुनाया अड़ियो। साहब आखन लगे, नंद लाल ए सौदा मेनू पुगदा नहीं, कोई भी सौदा ऐसा नहीं करदा जिदे विच काटा होवे। जिहड़ा सौदा ना पुगदा होवे ओ कोई करदा, इस करके नंद लाल ए सौदा मेनू पुगदा नहीं। ता मुड़ बेनती कीती, कहया जान बदल विच देसा एक नजर मेर दी करियो। सौदा ए मंजूर नहीं उस आस सुनाया अड़ियो। भाई नंद लाल साहब अपनी जुबानी आप दस रहे हैं कि जिस वेले कलगीधर सचे पातशाह दे कोलों मैं दात मंगी, ता किवें मेरे ते बख्शिश होई। कया जान बदल विच देसा एक नजर मेर दी करियो। ता अगों जवाब मिलिया, सौदा ए मंजूर नहीं उस आख सुनाया अड़ियो। नंद लाल रो पिया गरीब नवाज, एक नजर दे बदले मैं अपनी जिंद जान देन नू तैयार हां। ता दूसरी बेनती कीती, कहया एक निगाह दे बदले मैं जान अपनी हां देंदा क्यों नहीं लेंदा। कलगीधर सचे पातशाह ने जवाब दिता, नंद लाल मित्र किया विच तेरे साडे ए सौदा नहीं हुंदा, अग नहीं पैंदा, ए सौदा मैनू पुगदा नहीं। पहला तू मैनू अपनी जिंद जान देवे ते ओदे बदले मैं तेनू एक मेर दी निगाह करा। ए तू दाता होया देन वाला ते फिर मैं मंगता ना। भाई नंद लाल ए सौदा मैनू पुगदा नहीं। कहा एक नजर दे बदले मैं जान अपनी हां देंदा क्यों नहीं लेंदा, मित्र क्या विच तेरे साडे ए सौदा नहीं हुंदा, अग नहीं पैंदा। ता भाई नंद लाल चरणा नूं लिपट गया गरीब नवाज, मैं बड़ा सियाणा समझदार वड्डे वड्डे मसले हल करन वाला, पर तेरे चरणा विच आके मेरी हैरत गुम हो गई, मेरी अकल कम नहीं कर रही। गरीब नवाज की मंगा। साहब कलगीधर सचे पातशाह ने आखिया, नंद लाल सिर दी कोई लोड़ ना उथे सिर देवन वाला देण, उथे सिर दी लोड़ नहीं। आ जिहड़ा कहना ना मैं की देया, हजूर गुरु नानक सचे पातशाह जिस वेले 18वें टापू विच गए, राजा सुगड़ सैन दर्शन करन वास्ते आया। चंडे बाडी नूं साहिबां ने निहाल कीता, चंडे बाडी दे कोल आउंदा सी इंद्र सैन, उग्र सैन दा पाणजा। उन्हें खबर कीती, मामा जी दर्शन कर लो, आप नारायण कला तार जग में परवरियो, गुरु नानक दे दर्शन कर लो, भुखा निकल जाणगी। ते राजा आप चल के आया, नाल मोतियां दे थाल, हीरे जवाहरात। जिस वे साहब धन गुरु नानक सचे पातशाह दे चरणा विच आण पहुंचया, ते थाल अगे रखिया, ते गल पला पा के बेनती कीती, गरीब नवाज ए पेटा मंजूर करो। हजूर गुरु नानक पातशाह आखन लगे, राजा की लोड़ सी ए पदार्थ लियाउण दी, ए पेटा लियाउण दी। कहिंदा गरीब नवाज मैं तुहाडा सिख जो होया, सिख दा फर्ज है अपने गुरु अगे कुछ पेटा रखे, तो तेरिया तिथिया दाता विचों ए कुछ पेटा है जो तेरे चरणा विच हाजर है, आप कबूल करो।
ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਖਣਗੇ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਿਗਾਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਧਨ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਨ ਲੋਕਾਂ ਤਨ ਪਸਮੇ ਟੇਰੀ, ਤਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰੁੰਨਾ, ਤਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਰੋ ਪਿਆ ਰਾਜਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੁੱਲ ਫਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀ? ਜਾਂ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

देहो दयाल प्रभ चित तुम्हें अरादा। हे वाहिगुरु मैनू ऐसी मत दे कि मैं दिन रात तेरा नाम जपा सतना। साध संगत तुसी भी जपो श्री वाह। नाम दा कितना फल है, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। आखिया नाम जपेगा मिलेगा की। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अपनी बाणी विच फरमान करदे हन, गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सुखां नूं लभदा सुखां दी खातर की कुछ करदा फिरदा, पर पता सुख मिलदा किवें है और किसनूं मिलदा है। आखिया जो कोई जपदा सतनाम। पर शर्त है अपने आप नूं मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कुछ बनना चाहना, मालक दे दर तों खुशी लेना चाहना, गुरु नानक दी कृपा दा पात्र बनना चाहना, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर, जिन्ना चिर दाना मिट्टी विच नहीं मिलदा उगदा नहीं, कुछ फल नहीं मिलदा। इसे तरह हजूर कलगीधर सचे पातशाह ने नंद लाल दी होमे खिंच लई ते अंदर तूं दा निवास कर दिता। हुण जिधर भी नंद लाल वेखदा है हुण कलगी वाला ही नजर आउंदा। इधर भाई नंद लाल ते कृपा होई ते उधर गुरु नानक सचे पातशाह दा ओ सिख राजा सुगड़ सैन हुण राज विच रहिंदिआं होइआं वी, राज भाग दे सुख माणदिआं होइआं वी, अंदर हर वेले इको ही गल फिरदी है, इको ही बचन करदा है। राज भाग अपना नहीं समझदा।

संत सरन जो जन पर सो जने उतर नहारे संत की निंदा नानका बहुर बहुरे अवतार अष्टपदी संत के दुखन आजा कटाए संत के दुखन जमते नहीं छुटाए संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होई मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संत के दुखन सब को छलाए संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थौ को नाहे नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते तरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अदबीज से टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सांस बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ ना है आपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अवन राख नहार नानक संत भावे ता लय उबार संत का दुखी ए बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जीव पावक ई तन नहीं तापे संत का दुखी छुटाए अकेला जीव बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी तनम ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत किरत निंदक का तुही पया नानक ज्योतिष पावे सोई थी संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न तिस्टै कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया कितना मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे ते आवो सास गिरास सब कुछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे।

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इन्ना जानना कि तैनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तैनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देण दी वी गल तेरी है। जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर

सेवा सिमरन से खुशी दी मोर लग जे ओदी तीजी निशानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे जे ओदी तीजी निशानी है, ओनू मैं अपना रूप ही बना देना, आखो सतनाम। खालसा मेरो बोलते नहीं, खालसा मेरो रूप है। क्या सी ना बाबे ने अटल शाही धर्म टकसाल चो सेवाबंदी टकसाल चो किसी ने जदों अमृत छकिया ते आख्या जी तुहाडे दीदारे ते कलगी तन कहा ना पंजां दे कर लई त्यार बार त्यार संघां दे विचों मेरे होणगे महाराज ना पंज मिलण एक दे कर ली एक सिंह नितनेमी त्यार।

करके नितनेम करके सिमरन करके अपना मुख शीशे च वेख ली तेन ओदे विचों ही मेरे दर्शन हो जाएंगे। गज के आखो सतनाम खालसा जी। बाबा दीप सिंह जी जदो ये सुनिया कि ओनू मैं अपना रूप बना देना ते कलगीधर पातशाह कहते दीप सिंह उथे ही आ जा पातशाह कोला मांजदा पिया जी महाराज बड़ा रगड़िया कोला बहुत जपदिया जपदिया कीता हां महाराज ते दीप सिंह फिर कोले चो अपना मुख वेख नजर आंदा आखो सतनाम कोले चो तेनू मुख नजर आना शुरू हो गया कहते कोला इना कल शिकाया सी कि जदों कोला वेखदे ने बाबा दीप सिंह जी ते कोले दे विचों अपना मुख की कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दे दीदारे हो रहे ने गज के आखो सतनाम। प्यारियो जिदी सेवा तो प्रसन्न हो जे उन्हूं अपना रूप बना दे सच्चे पातशाह कृपा करन हाथ जोड़ के बेनती जे एक नाम जपण वाले दा दिहाड़ा आप जी मना रहे हो इथों दे सारे गुरमुख प्यारे जड़े सिख वेलफेयर सोसाइटी वाले बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर एसोसिएशन वाले वाहेगुरु इन्हां सारयां नूं चढ़दी कला बख्शे।